आत्मा बस दिवस जे को जान प्यो नानक ता का दास है, नानक ता का दास है। सोई निरंजन दिव महला पहला खुंबे बदा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए ज्ञान का बदा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए।

Thank you.

Thank you.

जित जमै राजान पंडोई पंड उपजै पंडै बाज ना कोय। नानक पंडै बारा एको सच्चा सोय। जित मुख सदा सलाई है भागा रतीचार। नानक ते मुख उजले तित सचै दरबार पड़।

जगत रही लपटाई इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया मन मुख खादे गुरमुख उभरे जिनी सच नाम चित लाया बिन नाम जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया तंदा करतिया नेफल जन्म गवाया सुख दाता मन नाम साया नानक नाम तना को मिलया जिन को तुर देख पाया सो कहो डल गुरु सेवी है अहनस सहज सुभाई दर्शन बरसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए ओ वै सिपत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चटिए तुद डिठे सचे पात शाह मल जन्म जन्म दी कटिए तुद डिठे सचे पात शाह

ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ।

माया मोह गुबार है, गुरु बिना ज्ञान ना हो।

गुर के शब्द मिलाए, मेरी मेरी कर दे घट गए, दिन हाथ के ना आया।

आसा मनसा ये शरीर है, अंतर ज्योत जगाए, नानक मन मुख बंद है, गुरमुख मुक्त कराए।

0: गुरमुख मुक्त करई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जे सौ चंदा उग वह सूरज चढ़ हैं हजार इते चानन होंदियां गुर बिन घोर अंधार गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुरु बिना मैं नाहीं होर गुर की टेक रहो दिन रात जा की कोई न मिट दात बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन पर तख गुरु निस्तारे दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ। परम सत्कारियो जुगो जुग अटल धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा विच गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सतसंगी जनों सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी का लाहा प्राप्त किया है। लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार अज दे अमृतमई बचना दा पाठ पावन शब्द भाई साहब जी पासों सरवन किया। शब्द दी विचार दे नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है मन बिरतियां नूं एकाग्र करदे हुए निमाणे जे हो के सतगुरु महाराज दे पावन चरणां च जुड़न दा यतन करिए। गुरु पातशाह जी अज दे शब्द दे राहीं मनुखी दुनियावी जीवां नूं जो समझाउणा चाहुंदे हन एक मन एक चित हो के समझण दा यतन

आप जी रोजाना इस स्थान तो अमृतमई बाणी की लड़ीवार शब्द विचार का लाहा प्राप्त करते आ रहे हो। वडहंस राग धन गुरु अमरदास महाराज तीसरे पातशाह जी वल्लों उचारण किया होया ये पावन शब्द गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी पावन अंग 559 दे उपर सुभायमान है। गुरु अमरदास महाराज जी इस पावन शब्द विच जो रहाओ वाली पंक्ति केंद्री भाव है, मन नूं समझाउणा करदे ने। जिहड़ा जिहड़ा भी इस शब्द का अभ्यास करेगा वो अपने अपने मन नूं समझाएगा। गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी दे राही जदों भी गल आएगी कि मन मेरे, इहदा मतलब असीं अपने अपने मन नूं समझाउणा है। अपने मन नूं की समझाउणा है? मन मेरे गुरमत करनी सार, सार दे रारे नूं औंकड़ है श्रेष्ठ उत्तम। मेरे मन तू गुरु दी मत लैके, क्योंकि जे मन अपनी मत लैके चलेगा फिर ये जीवन सफल नहीं हो सकता, क्योंकि मत जड़ी है वो कुमत हो चुकी है। मत जड़ी है भरी है मत पापां कै संग, उते पाप नाल बुरियाइयां नाल भरी है। मन रे कौन कुमत तैं लीनी, मन ते कुमत है, इसलिए अपनी मत छड़ के तू गुरु दी मत लैके चल। एक पासे ही तुरना पैना, जां अपनी मत दे मगर जां गुरु दी मत मगर, एक तां छड़नी पैनी है। दोवां मगर लग के नहीं चलिया जा सकदा। जे मन अपनी मत लैंदा फिर ये कुराहे पै जाएगा, फिर ये भैड़ी मत लैके अपने मंजिल अपने मुकाम तक नहीं पहुँच सकता। इसलिए इनू अपनी मत छड़नी पएगी ते गुरु दी मत लैनी पएगी। भगत नामदेव जी दी मत भाव मां ये कह रही है कि जो समय दा बादशाह कहिंदा तू ओ गल मन लै, तू झुक जा। पर नामदेव जी मन दे राही अपनी मत रूपी मां नूं की कहिंदे आ, ना हो तेरा पूंगरा ना तू मेरी माए। भगत नामदेव जी कहिंदे अपनी मत रूपी मां नूं कि मैं तेरे मगर नहीं लगना, तू ते सच दा रस्ता मेरे कोलों छड़वा रही है, तू ते मैनू सच दे मार्ग तो चलण तो रोक रही है, तू ते मैनू सच बोलण तो भी रोक रही है, इसलिए ना मैं तेरा पुत्र ते ना तू मेरी मां है। पुत्र कौन है? मन। ते मां कौन है? मत। मत ने आखिया ना भी जो बादशाह कहिंदे तू ये बोली बोल, मन कहिंदे नहीं। सीधे लफ्ज़ां विच जवाब, क्योंकि जिस मन नू सोझी आ गई, जिन्हों सोझी आई नहीं उन्हें ते मां मत रूपी मां मगर लग के तुर पैना है। ते जेड़े कुमत मगर भैड़ी मत मगर लग के तुरे उन्हां नू ही महाराज ने कहा सी मन रे कौन कुमत तैं लीनी। इसलिए जे सानू लगता है भी साड़ी मत माड़ी है
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਏਗੀ, ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤਮ ਮੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਸਗੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹੇ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਿਲਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਖਣਾ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉੱਚਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਚਰਣ ਸਾਫ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਮੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਲ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੇ ਆ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੰਗਤ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਲੰਘਾਤਾ, ਪਰ ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੇ। ਜੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਪਰ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪਰ ਕੇਸ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਗੀ? ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਘੱਟ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਰੋਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ, ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਛੇਵਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦਿਖੇਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਰੀਆਈਆਂ ਹੀ ਬੁਰੀਆਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੋਗੇ ਮਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਯੁੱਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਰੋ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਔਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਭੁਲਾ ਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ। ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
एक अद्ध सीन देखण नूं मिलदा है गुरु दरबार दे विच, वो ऐसा उहदे विच खुब जांदा है, वो भुली जांदा है वी सामने कीर्तन हो रहा है, भुली जांदा है सामने गुरु महाराज का प्रकाश है, पाठ हो रहा है, भुली जांदा है, वो ऐसा उहदे विच मस्त हो जांदा है, गलतान हो जांदा है। फिर उहनूं कोई आके हलूणा दे के हिला के उहनूं कहिंदा वी कम से कम ध्यान दे, गुरु घर बैठा तू। इहदा मतलब ये जिहड़ी ये माया है, ये कलयुग का प्रभाव इदां ही पैंदा है। माया किहनूं कहिंदे आ, जिहड़ा चित नूं परमा दे, माया चित परमेण। इसलिए असी अपनी मत नूं छड के गुरु की मत लैके चलांगे, फिर मन सीधा तुरिया जाएगा। पर मन नूं समझाउणा पहला पैणा ना, मन विगड़िया होया है, पहले नूं समझाउणा पैणा, इहदे खाने गल पाउणी पएगी। अपने अपने मन नूं शब्द का आसरा लैके समझाओ, बाहरों नहीं आउणा किसी ने समझाउण, शब्द लो, शब्द नाल अपने अपने मन नूं झंझोड़ो, समझाओ अपने मन नूं। मन मेरे गुरमत करनी सार, मेरे मन तू गुरु दी मत लै, गुरु दी मत विच तेरी करनी उत्तम हो जाएगी, तेरा आचरण, तेरा करैक्टर, तेरी सोच उत्तम हो जाएगी। सदा सदा हर प्रभ रवहें तां पावहें मोख द्वार, जिहड़े बंधना विच तू पिया होया ना, उत्थो तैनू मुक्ति मिल जाएगी। ये जिहड़े आसा मनसा काम क्रोध लो मोहंकार, ये बंधन ही ने, इन्हां तो तैनू मोख मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष दा द्वार जिथों निकल के तू अपने मूल तक पहुँच सकदा है। वो दरवाजा तो बंद है, मन जावे किथे? नौ द्वारे खुले हुए ने ते नौवां विचों मन निकल जांदा है बाहर, मुड़ के परत के वापस नहीं आउंदा। ये मन अखां चो निकल गया, मुड़ के घूमदा पूरे संसार विच, कन्नां तो मन निकल गया, वह दरवाजा ही नहीं इनू मिलिया। वह कित्थों मिलना सी? वह गुरु की मत चो मिलना सी। नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए भावनी एक ना दसवां द्वार दिखा, जिथों मोक्ष मुक्ति मिलनी सी, जिथों इन्हें अपने मूल नाल जाके जुड़ना सी। वो दरवाजा किने दिखाउणा है? गुरु की मत नाल, गुरु दे ज्ञान दे राही। इसलिए मन तू गुरु की मत लै, और गुरु की मत कहिंदी सदा सदा हर प्रभ रवहें, जे तू सदा परमेश्वर का नाम जपदा रहे, जे तू नाम का अभ्यास करें तां पावहें मोख द्वार। वो जड़ा मोख द्वार है ना, दरवाजा मुक्ति का, फिर तू उन्हूं पा सकदा है। जिन्हों खोल के जो दरवाजा खुलेगा तो तेनों वो अपने मूल तक पहुँचन का रस्ता मिल जाएगा। असी अज्ञानी होण करके सानू कई लोगों ने उलझा दिता, कोई योगी बन के उलझा रहा है, कोई सन्यासी बन के, कोई साधु बन के, कोई कुछ बन के, कोई तीर्थी बन के, कोई वर्त रख के, पता नहीं किन्नियां ने उलझाता। ये दरवाजा मोख दा एवें थोड़ी मिलना सी, कन्ना च मुंदरां पा के थोड़ी मिलना सी, अन्न छड के वर्त रख के थोड़ी मिलना सी, बाहर दे तीर्थां ते भटकण नाल थोड़ी मिलना सी, ये ते मन दे राही मिलना सी। असी तन करके धर्म दे कर्म कीते, क्योंकि सानू दस्या ही ये गया। महाराज कहिंदे तू परमेश्वर दे नाम नूं त्या, जां अपने मन नूं कहिए, गुरु दी मत कहिंदी आ सदा सदा हर प्रभ रवहें, जे तू सदा उन्हूं सिमरें, सदा उहदा सिमरन करें, उन्हूं चेते रखें, तां पावें मोख द्वार, तां है

रही, क्योंकि मन दे तल ते गल बननी सी, मन जुड़दा नहीं पिया। समझाइए अपने अपने मन नू, केवल बाहर दियां हाजरियां ही ना रह जाण साडियां, असी हाजिर हो के भी गैर हाजिर ना हो जाइए। दुनिया दी नज़र विच हाजिर हाँ, पर वाहिगुरु दी नज़र च गैर हाजिर हाँ। जिवें एक दिन कहा ना भी परिवार माँ बाप दी नज़र विच बच्चा स्कूल हाजिर है, पर टीचर दी नज़र विच बच्चा गैर हाजिर है। हुण सही कौन है, गलत कौन है? मापे भी सही ने, टीचर भी सही है। माँ बाप दी नज़र विच बच्चा स्कूल विच हाजिर बैठा है, टीचर दी नज़र दे विच बच्चा गैर हाजिर है, फिर ये कहानी बिगड़ी कित्थे है? माँ बाप भी सही बोलते हैं, सच बोलते हैं, तो टीचर भी सच बोल रहे हैं, क्योंकि वह क्लास विच हाजिर नहीं होया। माँ बाप कहिंदे वह तो इत्थों दी टाइम सिर चला गया, वह तो स्कूल होना चाहिदा सी। जदों पता कीता, सर्च कीता, टीचर दी गल भी सही निकली माँ बाप दी, क्योंकि वह बैठा ही ग्राउंड दे विच है, वह क्लास विच ते गया ही नहीं। माँ बाप दी भी गल सही है, बैठा तो स्कूल दे अंदर ही है ना वो, पर यह भी क्लास विच नहीं बैठा, ग्राउंड दे विच बैठा है। इसलिए टीचर दी गल वो किवें सुनेगा, वो तो क्लास विच बैठना पैना है, फिर टीचर दी गल सुनेगा। वो कहिंदे भी मैं तो जदों इहदी हाजरी लाई ये गैर हाजिर सी, साडा काम ये तो नहीं किते कि असी गुरु मार्ग। साडे परिवार वाला कहिंदे जी गुरुद्वारे गए ने, ते की गुरुद्वारे जाके गुरु दी गल सुनी है कि गुरु दी गल पल्ले बन्नी है कि गुरु दी गल सुन के मैं अपने घर लैसन लैके जा रहा। परिवार वाले कहिंदे आ वी ओ गुरुद्वारा साहब गए ने, ते गुरु महाराज कहिंदे मेरे कोल ते आया ही नहीं, ओ मेरे कोल ते पहुंचया ही नहीं। साडी कहानी भी कुछ इदां ही है। ते जे लग जे पता टीचर नू, फिर उनू मार भी पैंदी है। जे लग जे परिवार नू, मापिया नू, वह घर जाके वखरा कुटदे आ कि तैनू पढ़न लई भेजे असी। सच है कई आउंदे आ ग्राउंड चों ही होके चले जांदे आ, वह ग्राउंड तो अगे पौड़ियां चढ़ के गुरु दर तक आउंदे ही नहीं है, वह ग्राउंड तो ही मुड़ जांदे आ, पर देखण च गुरुद्वारा साहिब आए ने। इस वास्ते ये देखना जरूरी है कि मैं टीचर कोल आया ते टीचर दी गल सुनी, मैं वो लैसन लेके गया। कई बारी बच्चा स्कूल तो वापस आए ते पुछया भी अज की पढ़ाया टीचर ने, कहिंदे अज ते पढ़ाया ही नहीं। टीचर नू पुछया, वो कहिंदे मैं मत्था मारदा रहा इन्हां नाल पढ़ा पढ़ा के, मेरा दिमाग जिहड़ा सी वो थक गया, पर ये कहिंदे घर जाके पढ़ाया ही नहीं। इत्थे जोर लग जांदा कीर्तन करन वालियां दा, कीर्तन करन वालियां दा जोर लग जांदा, वो जोर ला के सुणाउंदे आ, ते सुनण वाला कहे जी उन्होंने तो सुनाया ही कुछ नहीं। इस वही ये गल्लां समझणियां जरूरी ने। जे शब्द रस असी लैणा है तां सतगुरु महाराज जी कहिंदे मन मेरे जोर देना है, मेरे इत्थे जोर दे के चलना है, मेरे मन ये तैनू कहा जा रहा है। गुरमत करनी सार, सदा सदा हर प्रभ रवे ता पावे मोख द्वार। मन ढीठ है, मन जिद्दी है, मन नहीं समझदा, चंचल है। फिर इनू समझाया माया मोह गुबार है, तैनू क्यों गुरु की मत चाहिए है, तैनू क्यों गुरु का ज्ञान चाहिए है, क्योंकि ये जड़ा माया है ना, त्रै गुणी माया, इहदा जड़ा मोह है, ये गुबार है। गुबार का अर्थ होंदा है घुप, हनेरा, तमा बहुत ज्यादा है, तमा बहुत है, घुप हनेरा, दिसदा ही कुछ नहीं पिया। ते गुबार का अर्थ होंदा है जिवें पेट विच हवा भर जाए ना, गैस भर जाए, कई बारी पेट फुल जांदा है, बंदा बड़ा औखा होंदा है। कहिंदे की होया? कहिंदे गुबार बनिया पिया है। हुण उह हवा जिहड़ी गैस भरी है वह निकलेगी तो आराम आएगा। ये तो आपां आम
शरीर दे तल ते देखदे आं। एक तां इह हंकार दी हवा भरी पई है अंदर, इन्नी हवा भरी पई औखा ही रहिंदा हर वेले, हर वेले औखा। हंकारी बंदा कदे सौखा हो ही नहीं सकदा। जिहड़ा बंदा हंकारी हुंदा ना वह कदे सौखा नहीं हो सकता, क्योंकि वह जो गुबार भरिया ना वह उन्हें टिकन ही नहीं दिता। घुप हनेरे विच भी बंदा ठेडे खाता है, घुप हनेरे विच भी रस्ता भटक जाता है। महाराज कहिंदे जिहड़ी त्रै गुणी माया ना इहदे विच जिहड़ा तम है इन्हें मोह ऐसा पैदा करता, दिसदा ही नहीं कुछ पिया। माया मोह गुबार है गुर बिन ज्ञान ना होई। हुण ओह जिहड़ा गुबार अंधकार घुप हनेरा है उहदे विच सूरज दी रोशनी कम नहीं करेगी। उह तां दिन वेले भी गुबार बनिया होया है, रात तां चलो हुंदी होई रात हनेरी है पर दिन वेले भी हनेरा, क्योंकि उत्थे सूरज दी रोशनी ने काम नहीं करना। उत्थे आ बाहर दियां भावें जिन्नी मर्जी लाइटां जगा लो इन्हें काम नहीं करना, भावें हजार दीवे जगा लो उन्हें भी काम नहीं करना, क्योंकि ये जड़ा हनेरा है ये गुरु दे ज्ञान तो दूर होना है। गुर बिन ज्ञान ना हो वही ना सुख वसै मन आए। जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, इते चानण हुंदिया गुरबिन घोर अंधार। इत्थे गुरु दी मत लैनी पएगी फिर ज्ञान आएगा, फिर सोझी आएगी, समझ आएगी, फिर मन समझेगा। असी इत्थे आए हाँ ज्ञान दी रोशनी लैण वास्ते, असी इत्थे आए हाँ गुरु दा ज्ञान लैण वास्ते। पर असी ज्ञान किन्ने कु आ जिहड़े लै रहे हैं, बाकी तो सब गुरु महाराज को मायावी पदार्थ ही मंगण आ रहे हैं मेरे समेत। असी ज्ञान कित्थे मंग रहे हैं? कौन है जिहड़ा कहिंदा मैं अज्ञानी हो के आया? जिहड़े कहिंदे आ मुबारक है तुहाडे चों। बड़ी बार आपां बचन पढ़े आ, वह कौन कहिंदा वी गुरु साहब अज मैं इसलिए आया, हम अंधले अंध बिखै बिख राते, क्यों चल गुरु चाली, सतगुर दया करे सुख दाता हम लावै आपन पाली। मैं इस लई तुहाडे दर ते आया। विरले होणगे गुरु तो बिना ज्ञान नहीं होना, सोझी नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी, मोख द्वार तक पहुंचिया नहीं जाएगा। ते फिर जदों गुरु ने ज्ञान देना वो किवें देना है? कहिंदे शब्द लगे तिन बूझिया दूजह परज विगोई। जदों गुरु ने ज्ञान नाल भरपूर शब्द दिता, बिया लै शब्द, शब्द नाल जदों मन लग्या, शब्द लगे शब्द नाल मन जुड़ गया, तिन बूझिया फिर मन नू होश आई, फिर मन नू समझ आ गई कि मेरी भटकना मेरे दुख मेरी चिंता दा कारण दूजे परज विगोई, दूजे संसार वाला पासा, माया दे मोह वाला पासा। ये जिहड़ा द्वैत भावना अंदर बनी सी ना इन्हें मेरी जिंदगी बिगाड़ के रख दिती। हर बिसरत सदा खुआरी, इन्हें मैनू खुआर कीता सी। हुण पता लगा पहले तो माया चंगी, पदार्थ चंगे, संसार बड़ा चंगा लग रहा सी। पहले तो कौड़ियां चीज़ां भी बड़ियां मिठियां लग रही सी, पहले तो झूठ भी बड़ा प्यारा मिठा लग रहा सी, निंदिया चुगलियां भी बड़ियां चंगियां लग रही सी। पर जदों मन शब्द नाल जुड़ गया, मन दी शब्द नाल जदों अटैचमेंट हो गई, फिर इनू होश आ गई, फिर इनू समझ आ गई। जदों फिर कहिंदे ना जदों जागो उदों ही सवेरा, कि जदों होश आई ते देखिया बचपन भी लंघ गया, जवानी भी लंघ गई, पता लगा बुढ़ेपा आ गया, मैनू पता ही नहीं लगा। कई मिलदे आ बजुर्ग कहिंदे पता ही नहीं लगा सारी उम्र लंघ गई, हुण बुढ़ेपे च जाके समझ आई है, हुण पता नहीं उहदे घरों सद्दा कदों आ जाए। मिलदे ने बजुर्ग, वो कहिंदे बचपन भी इदां ही लंघ गया, जवानी भी इदां ही लंघ गई, हुण बड़े पेच जाके शब्द की चोट लगी ते अखां खुल्लियां,
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਨੇੜਾ ਆਇਆ, ਪਿੱਛਾ ਰਿਹਾ ਦੂਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪਰਜ ਵਿਗੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਨ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚੰਚਲਤਾਈ ਮਨ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੂੰ, ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣ, ਇਹ ਚੰਚਲਤਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਵੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਮੋਕਸ਼ ਦੁਆਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭੀੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਮਨ ਗੁਬਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬਹੁਤ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਗਲ ਹੋਏ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ

फिर गुरु अमरदास महाराज जी दे राही, क्योंकि गुरु तो बिना गल नहीं ना बननी, गुरु महाराज जी दे राही अपने मन नू समझाओ, मन मेरे केंद्री भाव लैके चलना है अपा नाल, हर पंगती दे उत्ते कहना है मन मेरे, मेरे मन गुणा का निदान एक है, गुणा का खजाना, तू कित्थे भटकदा फिरदा है, तू शुभ गुण लेने वो मड़िया चो थोड़ी मिलने हैं। बड़ी बार जिक्र किया भी मैं लेना होवे करियाने का समान, तो मैं चला जावा दवाइया की दुकान ते उनू कहां भी आटा घ्यो नमक दे दे मिल जाएगा, अगला नाले झिड़केगा तो नाले कहेगा अन्ना दिसदा नहीं, ये शब्द बोलेगा ना वो भी अन्ना दिसदा नहीं, एडा वड्डा लिखिया होया दवाइया तो तू आ गया करियाने का सौदा लैण। हुण करियाने की दुकान ते जाके कहां मैनू इन्ना तोले सोना दे दियो, वह भी ये गल रिपीट करेगा भी तैनूं दिसदा नहीं इत्थे ते आटा घ्यो मिलदा, इत्थे सोना चांदी थोड़ी मिलदा, तू कित्थे आ गया। असी जिहड़े शुभ गुण लैणे आ उह तुरे फिरदे आ, देहधारियां कोल तुरे फिरदे आ, मड़ियां च तुरे फिरदे आ, मसाणा च, उत्थे थोड़ी पिया वह खजाना जिहड़ा मिल जाएगा। खजाना खुलिया कित्थे है, तुरे किते फिरदे आं, ये भी नहीं कि पता नहीं लगा सानू, जे खजाना बंद होवे फिर ते कहिए भी सानू नहीं पता लगा, पियो दादे का खोल डिठा खजाना, वो खजाना खोल के दे दिता, आवाजा भी दे रहे ने, ये चलो बंदे नू नहीं दिसदा सुनदा ते है कि अन्ना बोला हो गया, ये मैं नहीं कह रहा, ये शब्द विच महाराज कहिंदे माया धारी अत अन्ना बोला, ना इनू खजाना दिसदा पे है ना इनू सुनाई दे रहा है, ये अन्ना भी हो गया ते बोला भी हो गया, ये हथों भी गया ते पैरों भी गया। जे नहीं दिसया प्यो दादे का खोल डिठा खजाना तो सुनदा ते है ना, कबीर लूटना है ता लूट ले, राम नाम है लूट फिर पाछे पछताओगे प्राण जाएंगे, फिर भी नहीं पता लगा खजाने का। खजाना है कित्थे खुलिया, असी लभदे किते पए आ, लभदे पए आ असी मड़िया ते मसाणा ते बाहर दे तीर्थां जंगलां पहाड़ां, पता नहीं कित्थे कित्थे बंदा लभदा खजाना, ते गुरु ने खोलिया होया है, फिर जिथे खजाना खुलिया उत्थे ही आना पैना। इक्को ही खजाना ये भी नहीं भी तुहानू मड़िया ते मसाणा चो मिल जाएगा, इत्थों इत्थे खजाना ही मिलना तुहानू शब्द दे राही, गुरबाणी दे राही। गुरु अर्जन देव जी महाराज तो सदके जाया करिए, आपां असी भटकदे फिरदे आ, गुरु अर्जन देव जी एडा वड्डा खजाना देण लई तुहानू तत्ती तवी ते बैठना पिया, इन्ना वड्डा मुल देना पिया, असी की कदर पाई गुरु दी। गुरु पातशाह ने सानू ये खजाना देण लई बाणी एकत्र करके ग्रंथ साहब जी तैयार किए आ, ते असी फिर तुरे फिरदे आ भटकदे फिरदे आ, क्यों पासी गुरु अर्जन देव जी की शहादत की कदर नहीं करते, बस छबीलां ला लो ठीक है, छबीलां ला के नाले तुसी शब्द ला लो ते खुशी एक तरह की आपां मना रहे हुंदे, देखी दा रोड सड़कां दे लोग खुशी हुंदे छबीलां वंड के, कोई पता हुंदा भी ये छबीलां क्यों वंड रहे हैं, कुछ वंडन वालियां नूं नहीं पता हुंदा कि शहीदी कादे वास्ते होई सी, क्यों होई सी, वंड रहे ने बस। ये खजाना देण वास्ते महाराज गुरु नानक साहब घर नहीं मुड़े, महाराज यात्रा ही करते रहे, ये खजाना किते गुरु के सिखा नूं मिल जाए, और ये नहीं कि कल्ले गुरु के सिखा, हर धर्म वर्ग नूं ये खजाना मिल जाए, खत्री ब्राह्मण शूद वैश उपदेश चौं वरना को संजा। खजाना देण लई दरबार साहब दे चार दरवाजे रख दिते, असी फिर भी नहीं समझ सके, उबलदे पानी विच की लोड़ पई सी गुरु महाराज नूं बैठण दी, इह इसे लई कि सानू सच्ची बाणी नाल जुड़ना आ जाए। गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं की लोड़ सी कुरबानी देण दी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं परिवार वारन दी की लोड़ सी,
ताकि उन्होंने समझ आ जाए कि आग्या भई अकाल की तवे चलायो, पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो, ते असी मान रहे हैं। सतगुरु महाराज जी जो समझाउंदे आ ये गल्लां करनियां पैणगियां, नहीं तो आप जिंदगी तो लंघ ही रही है इसे तरह, पर असी समझ की रहे हैं, सानू किन्नी सोझी हो रही है, किन्ना ज्ञान आ रहा है। सतगुरु महाराज जी कहिंदे गुणा का निदान एक है, आपे दे तां को पाए। ये खजाना वो आप त्रुट के जिन्हों दिंदा उही पाउंदा है। हुण मर असी फिर बह जांगे घर हाथ ते आ धर के, जदों उन्हें देना होएगा बुला लेगा, नहीं। साहब कहिंदे ये तां मिलना जे तू गुरु नाल जुड़ेगा, जिहड़ा जिहड़ा गुरु नाल जुड़ के ज्ञान की रोशनी ले लेगा उन्हों उन्हों ये खजाना मिल जाएगा। सतगुरु महाराज कोल असी सोझी लैण वास्ते आए हाँ, असी इत्थे ज्ञान लैण वास्ते आए हाँ, ये साडा ट्रेनिंग सेंटर है, असी इत्थे ट्रेनिंग लैण वास्ते आए हाँ, किवें बुरियाइयां तो बचना है, किवें असी चंगे गुण लैने हैं। पर असी बना की दिता, असी इत्थे बुरियाइयां छड के शुभ गुण लैने सी तां वो खजाना मिलना सी। असी आए सी हम अवगुण भरे, एक गुण नाही अमृत छाड़, बिखे बिख खाई, ताकि वाहिगुरु जी त्रुट के मैनू ये खजाना दे देन। तां महाराज कहिंदे ये खजाना एक है, एक दा ही है, एक खजाना एक दा ही है, नाम दा खजाना, आप आपे दे, जदों आप त्रुट के दिंदा है गुरु दे राही तां को पाए, फिर वो ये खजाना पाउंदा है। बिन नामै सब विछड़ी, गुर कै शब्द मिलाए। ये मन जिहड़ा सी नहीं समझिया, वो जीव स्त्री जिहड़ी विछड़ी सी ना, वो विछड़ी हो ही रह गई नाम तो बिना। मन ने अपना काम नहीं किया, मन कुराहे पै गया। हुण घर दे विच मां बीमार होवे, समझण लई केवल, घर विच मां बीमार होवे ते पुत नूं कवे जा पुत भज के दौड़ के जाके दवाई लिया, जा पिता बीमार होवे, जा कोई घर दा बजुर्ग बीमार होवे, पुत्र नूं कवे भी मैं बड़ा साह औखा हो रहा है, जा भज के दवाई लिया। वो भज के गया ते सही, पर रस्ते विच उन्हूं होर सोसाइटी माड़ी संगत मिल गई, वो दवाई लियाउण दी बजाए होर थां चला गया। शामां पै गईआं, शाम नूं मुड़ के घर आया, वापस दवाई नहीं लई, वापस आया आके देखिया मंजे ते मां पई पई है, शरीर ही पिया तुर गई। फिर रोंदा है ना, फिर मत्थे हाथ मारदा ही की बनिया, मैं ते गया सी दवाई लैण पर चला किते होर गया। साडी हालत भी यही है, असी शब्द दा रस लैण आए हाँ, वो शब्द दा रस मन ने जीव आत्मा नूं देना सी लिजा के, मन पै गया कुराहे, इनू काम क्रोध लोभ मोह हंकार ने घेर लिया, ये भुल गया मैं नाम दा रस लेना सी। उलझो मन माया उलझायो, मन ने माया ने उलझाता, जदों ये मुड़िया जीव स्त्री शरीर छड चुकी सी, वो विछड़ी आई ते विछड़ी चली गई, उनू नाम दा रस नहीं मिलिया। ये बाहरी गल्लां समझ के अंदर नू ले जाओ कि मेरे अंदर दी यही हालत है। मन आया सी नाम दा रस लैण, शब्द दा रस लैण, पर ये ते कुराए पै गया। ये गल्लां करनियां पैणगियां, क्योंकि यह नौजवान पीढ़ी जदों आउंदी है देखी दे, एक अद सारियां दी गल नहीं कर रहा, आउंदे तां कीर्तन सुनन पाठ सुनन है, पर किसे नुक्कर लग के ते मोबाइल दे विच मस्त होए हुंदे, पता नहीं की कुछ चलदा हुंदा है। तो जदों समाप्ति होंदी है घंटा दो घंटा बैठ के जाते हैं, की लैके गए? जेड़ा रस लैन आए सी वह तो मिले ही नहीं, वह तो लिया ही नहीं, खाली आए खाली मुड़ गए। जदों ये जीव इस्त्री ने घर छड़िया तो की पल्ले है फिर, साढ़े पल्ले तो कुछ भी नहीं है। बिन नामै सब विछड़ी, सारी इस सृष्टि दे विच एक दो जाने नहीं, यह सारी सृष्टि दे विच
ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿੰਨਾਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਰੇ ਪਿਆ, ਸੰਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮਤ ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਤੇ ਉੱਤਮ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ, ਉੱਤਮ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਵੇਂ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ

0: ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਕੀ ਲੈ ਗਏ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੂਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਇਆ, ਹੋਮੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਮੇ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੋਮੇ 'ਚ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਮੇ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੋਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਮੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੱਟਿਆ ਸੀ ਹੋਮੇ 'ਚ ਹੀ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਖੱਟਿਆ ਓਨਾ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 5 ਦੇ 5 ਹੀ ਗਵਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ। ਹਾਂ, ਹੋਮੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਪੱਲੇ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੱਲੇ 'ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਇਓ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਨਮ, ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਕੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੁਢੇਪੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸਰੀਰ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ, ਨਾ ਪਦਾਰਥ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੇ ਖਿਡੌਣਾ ਦਿੱਤਾ ਖੇਡਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਹਮ ਉਮਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਖੇਡ ਲਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੇਡ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲਿਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰ ਜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਫਿਰ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਟੱਕਰ ਖਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਘੱਟ ਗਏ, ਵਧੇ ਸੀ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੱਥ ਕਿਹੋ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰ ਪਰ ਉੱਠੀ ਚੱਲਣਾ ਛੱਡ ਜਾਸੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਸਰ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਜਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਨਾਂਗੇ ਪਾਵੋ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ, ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਗਹਿਲਾ ਰੂਹ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਸਿਰ ਪੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਏ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੂਤਰੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ, ਆਜ ਕਾਲ ਭੋਏ ਲੇਟਣਾ ਉੱਪਰ ਜਾਮੈ ਘਾਸ, ਘਾਹ ਉੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿੱਧ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, मैं इन्ने साल दा, मैं इन्ने साल दा, मैं एडी वड्डी उम्र दा, पर असी वधे नहीं हाँ, वध के भी घट गए हैं, बाहरों वध गए हैं, अंदरों घट गए हैं। अंदर साढ़े पल्ले की है, बाहर तो बहुत कुछ है, बाहर तो साढ़े को बहुत कुछ है, पर साढ़े अंदर की है, अंदर तो खजाना खाली पे है। जो असी नाल लैके जाना सी वो तो पल्ले बन्निया ही नहीं है, तो फिर असी किस गल का माण करते हैं, किस गल का हंकार है। महाराज कहिंदे मन मेरे गुरु दी मत लै लै, हजे वक्त है, टाइम है, समा है, गुरु दी मत लै लै, आ जा गुरु कोल, शरीर करके नहीं मन करके। तैनू गुरु महाराज सोझी देणगे, ज्ञान देणगे। ए मेरी मेरी करके दुनिया चों सिकंदर की लै गया, हिटलर की लै गया, दुर्योधन की लै गया, जड़ा दुर्योधन मानधारी की लै गया, रावण की लै गया, लंका गढ़ सोइने का पया मूर्ख रावण क्या लै गया, की लै गया, वो जो तू लै जाएगा। औरंगजेब की लै गया, बाबर की लै गया, जहांगीर की लै गया, शाहजहां की लै गया। जिन्ने भी मानधारी इस धरती ते आए, अज भी जड़े मानधारी ने वो की लै जाएंगे, जिहड़े कल वाले समय च आउण वाले मानधारी होणगे उह की लै जाणगे। जे साडे तो पहलां वाले नहीं कुछ लै गए, असी भी नहीं ले जाणा, जे असी नहीं ले जाणा ते साडे तो बाद वाले भी कुछ नहीं ले जा सकदे, ते फिर किस गल दा माण अहंकार सानू फुलाई फिरदा है। असी उस बांस दी तरह हाँ, जिहड़े बाहरों देखण नू चंगा है, अंदरों खोखला है, खाली पिया अंदर बांस, वो सुगंधी नहीं लै सकता चंदन की, आकड़िया रहिंदा है, नहीं सुगंधी लै सकता, टुट जांदा है, जां फिर अग्नि विच सड़ जांदा है, होर उहदे पल्ले की है। इसलिए महाराज कहिंदे आ मन मेरे गुरु की मत लै लै, तैनू समझ आ जाएगी, नहीं तो मेरी मेरी कर दे घट गए मुक गए। इन्ना हाथ कहो ना आया, उन्हां दे हाथ कुछ भी नहीं आया, ना बाहर दा खजाना ते ना अंदर दा, अंदरों भी खाली ते बाहरों भी खाली, ते जड़े अंदरों बाहरों खाली सी ओ फिर लोक गयो, पर लोक गवायो, आ भी गवा लिया जन्म, ते अगों थां कोई नहीं मिलनी। इत्थे दुख कनेरियां अगै ठौर ना ठाओ। इसलिए मन मेरे गुरु दी मत लै, तैनू होश आवे, तैनू समझ आवे कि मैं किहड़े भरम विच जीर। ये भरम ही है, मैं मेरी जिहड़ी करदे आ ना, वह भरम दे विच ही आउंदे आ। जैसा मानिया होए ना तैसा, की मन रहा मैं लखपति हो गया, की मन रहा मैं करोड़पति हो गया, की मन रहा मैं अरबांपति हो गया, की मन रहा अज मैं इस अहुदे ते पहुंच गया, की मन रहा अज मैं मंत्री तो मुख्यमंत्री बन गया, अज मैं इस थां तो इस थां ते आ गया, की मन रहा मैं मेरी मन रहा ना, मैं एडा वड्डा हो गया, मैं इन्ना उच्चा हो गया, मैं इन्ने उच्चे अहुदे ते पहुंच गया। महाराज कहिंदे जिथे मर्जी पहुंच जा, आउणा ते खाक विच ही है, असलियत तेरी इहो ही है कि अखीर नूं खाक राख हो जाणा है, ते चार बंदियां ने रल के जल प्रवाह कर देना है, जां मिट्टी च दब देना है। इस तों इलावा होर तेरे पल्ले की है, किथे गया वो माण जिहड़ा तू मानधारी हो के किसी नूं बंदे नूं बंदा नहीं सी समझदा, वो मानधारी वाली जिहड़े अंदर हंकार वाली अवस्था सी किथे गई, खत्म हो गई, मुक गई। की खटिया, की गवाया, की लैके गए आपां दुनिया चों। वड्डे वड्डे अहंकारिया नानक गर्ब गले, वो अपने हंकार विच ही गल गए, तबाह हो गए। गुरु महाराज कहिंदे हजे वक्त है, आपां सुन रहे हैं ना सारे, आपां सारे सुन रहे हैं अज शब्द, साडे कोल टाइम है होमे चों निकलण दा, साडे कोल वक्त है, असी मैं मेरी चों निकलीए। साहब जी कहिंदे ने मन मेरे गुरु दी मत लै, ते गुरु दी मत कहिंदी मेरी मेरी कर दे घट गए मुक गए। तिना हाथ कहो ना आया कुछ भी उन्होंने हाथ नहीं आया कुछ भी। गुरु नानक साहब ने कहा सी ना भी एडे झंडे झूलते आ तेरे कोठे ते ये की दिखाना चाहना है। कहिंदा जी मैं इन्नियां दा मालिक हाँ। मारे कहिंदे आला फिर सुई रख ला मेरी आपां अगे मिलांगे जाके जदों अगे मिलांगे ते आ सुई मैनू उत्थे मेरी वापस मोड़ दई अमानत रख ला। बड़ा खुश हो के आया घर आके कहिंदा घर वाली नू सुई सांभ के रख ला ये अगे जाके गुरु नानक साहब मिलणगे ते फिर सुई मोड़ देंगे। पहली गल घर वाली कहती है भी पूरा यकीन है अगे गुरु नानक साहब मिलणगे। पहली गल यकीन है भरोसा है कि अगे गुरु मिलेगा। दूजी गल ये मिलेगा भी तो सुई किहड़े हत्थां नाल लैके जानी है। हाथ ते तुहाडे इत्थे ही रह जाने हैं। कपड़ रूप सुहावना छड दुनिया अंदर जावना एकदम मत्था ठणकिया भी गल तो सही है भी हाथ तो मेरे इत्थे ही रह जाने हैं ते जिथे गुरु नानक साहब ने मिलन लई किया है उत्थे तो शरीर जाना नहीं है। जिथे किया ना महाराज ने आपां मिलांगे उत्थे तो शरीर नहीं जाना फिर यह सुई किद्दां लै जावां। महाराज कोल आ गया अगले दिन वापस। महाराज जी जदों मैं जाना जिथे तुसीं मैनूं मिलन लई कह रहे हो उत्थे तो सुई जानी नहीं नाल। महाराज कहिंदे क्यों? कहिंदे हाथ इत्थे रह जाने हैं सुई कित्थों पकड़ के। महाराज कहिंदे बस यही तो समझाउणा सी इहदे झंडे चला के मैं किस गल दी कर रहा है कदा मन कर रहा है। समझ आ गई गुरु नानक साहब दे समझाउण दा तरीका ही निराला सी नहीं अज भी समझा रहे हैं गुरबाणी विच अज भी निराले तरीके नाल समझा रहे हैं। समझण दी लोड़ है। यह भी सज्जन नूं समझ आ गई मैनू नहीं आई। भाई कौडे नूं समझ आ गई मैनू नहीं आई। भाई मूले नूं समझ आ गई मैनू नहीं आई। फर्क यह है बस। इसलिए महाराज समझाउंदे आ मन नूं समझाओ मेरी मेरी करदे घट गए तिना हथ किहो ना आया सतगुर मिलिया सच मिले। जदों सतगुरु नूं मन करके मिलांगे मेरे मन तू सतगुरु नूं आ करके मिल सच नाम समाया तेरे विच सच्चा नाम समा जावेगा।
1: आसा मनसा इह शरीर है

0: मुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए।
1: वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
0: राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सत गुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज छेती मन बजियां वधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां, शब्दोता गावो हरी केरा मन जनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सुधारो अरनाले, अरनालो तू मन मेरे दुख सब विसारणा। अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारणा, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सुधारो अरनाले, साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे। करता तेरे सब शै जिस दे सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कै नानक सचे साहिब क्या नहीं कर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मनाए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु बैठो जिस दियां ए वड्याइयां। कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित कारज भागै, कारज भागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया। पंच दूत दुदवस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम अर कै लागे। कै नानक तैस कोआ तेत कर अनद वाजे, अनद सुनो वडभागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहा भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनद तुरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता। माता तरत मात दिवस रात दाई दाया खेल सगल जगत, चंगी आईया बुरियाईया वाचे धर्म दूर। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम ते आया गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले किती छुट्टी नाल, जिनी नाम ते आया गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले किती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो ठाकुर।

0: नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ गुरु पूरा जन सिमरिया सही पे निहाल नानक नाम आराधना कारज आवै रास
1: सो कोटाल गुरु सेवियै एनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद जिठे सच्चे पात शाह मल जन्म जन्म दी कटिया सतनाम वाहे गुरु साहिब जीओ

शब्द रती बड़स है, सच नाम उरतार। सच संग रहे सद सच रहे, सचे नाम प्यार।

तू आपे आप निरंकार है, को अवर न बिया। तू करण कारण समरथ है, तू करे सोथिया। तू आन मंगया दान देवना, सब ना हजिया। सब आख हो सत गुर वाह वाह, जिन दान हर नाम मुख दिया। तू करण कारण समरथ है, तू करे सोथिया। तू आन मंगया दान देवना, सबना जिया। सब आख हो सत गुर वाह वाह, जिन दान हर नाम मुख दिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत, आजूनी सैभ अंगुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत, आजूनी सैभ अंगुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत, आजूनी सैभ अंगुर प्रसाद।

प्रभत दिवसरात को दाय दाखिल संगत संज्ञा कर्मी या अपनी के निर्णय के दूर।

एकल माटी कुंचर चीटी पाजन है बनाना रे अस्थावर जंगम कीट पतंगम काट काट राम समाना रे सो कहो टल गुरु सेवी है एनस सह सुभाई दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक माला तीजा शब्द रत्ते वडंस सच नाम उरतार सच संग रहे साधु सच रहे सच नाम प्यार शब्द रति बड़ हंस है सच नाम उरतार

ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹ ਵਾਹ।

Yeah, I'm not.

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਲ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸੱਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕਈਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਦਵਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਹੈ ਦੁਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਓ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵੱਡੇ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜੈਨੋ ਦੇਨੋ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੀ ਤੇ ਕਮਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੀ ਬਾਇਸ ਨਾਥ ਰਾ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਿਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਵੜੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹੇ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ ਜਿਨਾ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀ ਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤਵਹੇ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬੈਂਤਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੇ ਸੈ ਕੋ ਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਿਰੇ ਛਰਿਆ ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੇ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੇ
मने में सिमरन करया सब निधान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल त्रया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा भरिया सब निधान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल त्रया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परा भरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब त्या वही सब त्या वही तुध जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्या बहो संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना इक दाते इक पेखारी जी सब तेरे चोज बिडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेवहें जो सेवहें तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर त्या वही हर त्या वही तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैनो हर त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ ते आया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहण तुद जी हर अनेकी अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तप तापिह जपिह बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमृत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड़ अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुदे आपे भावै सोई वरत जी तू आपे करही सो होई तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे क जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साईं जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहो सब तेरी तू सब नीते आया जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुग वाया
तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरिया सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाही, जी जंत सब तेरा खेल, वियोग मिल बिछोड़िया संयोगी मेल, जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाणे, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला तित सरवरणे पैरे निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंकजों मोह पग नहीं चले, हम देखा तहें डूबी अले, मान एक न चेतस मूढ़ मना, हर बिसर तेरे गुण गले आ रहो, ना हो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवंत नानक तिनकी शरणा, जैन तू नाही विसरया, आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, मिल साध संगत भाजे केवल नाम, स्रंग जाम लाग पव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहो, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा, जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। इक ओंकार सेवा है गुरु जी की, फतेह पातशाही दसवीं, कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी करो हृदय रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सवै तुम कावो हो, आभादे मोहि बचावो हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सवै करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सबैरन को आय संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिखा हमारे तारी है, चुन चुन शतर हमारे मारी है, आभाद मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, हु जो सदा हमारे पच्छा, श्रीअस्तु जो करियो रक्षा, राख लियो मोहे रखण हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बापतरा, काल पाए शिव जो अवतरा, काल पाए कर विसन प्रकाशा,
सकल काल का किया तमाशा, ध्रवण काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, ध्रवण काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, शिव कन को सेव गुण सुख दियो, शत्रण को पलमो वध कियो, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी ते कुंचर असतूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछन्ने, घट घट के पढ़ पढ़ की जन्ने, जाव उद करख करा कर तारा, प्रजा तर्थ तव देह अपारा, जवे आ करख कर तुहों कब हूं, तुम मैं मिलत देह धर सब हूं, जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम साही ते रहित नरालम, जानत बेद बेद अर आलम, रंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनीर अनाद असंब, तका मूड़े उचारत पिता, जाको पेव न पावत बिदा, तको कृपाहुण अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, ड्रंकार का चीनत न भेव, आप अपनी बुद है जेती, बरनत पिन पिन तोहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूपे अनुपस रूपा, रंक भयो राव कहीं पूपा, अंड जेर से तज कीनी, उत्पज खान बहुर रच दीनी, कहो फूल राजा हवे बैठा, कहो सिमट भयो शंकर अकैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंप, अजुगा स्वरूप स्वयंभ, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे उबारे सिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रणगाता, जे आस तुझे तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवाय मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट न है, रक्षा हुए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे न हरेओ, ताकि ताप तनक मय हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शहा शवाय सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संवारा, काल फांसते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख तेरा, खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो ओवारी, सर ठोरम हो सहाई, दुष्ट दुख ते ले हो बचाई,
खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी, सर ठोर हो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुम्हारे, तब ते को आंख तर नहीं आन्यो, राम रहीम प्राण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सब है, बहुपेद कहे हम एक ना जान्यो, सिरियस पान कृपा तुम्री कर, मैं ना कह हो सब तो ही बखाने दोहरा, सगल द्वार को छाड़ के गए हो तो हारो द्वार, गहे की लाज अस गोविंदास तोहार, सगल द्वार को छाड़ के गए हो तो हारो द्वार, की लाज अस गोविंदास तोहा। राम कली महला तीजा अनंत, इको ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइया राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आइया शब्दो तंगावो हरी केरा, माने जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया, तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, तू के सब मसारना अंगीकार ओह करे तेरा, कारज सब सवारना सबना गलना समर्थ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले सचे साहेबा, क्या नहीं घर तेरा, घर तां तेरा सब किछ है, जिस दे सो पावे सदा सिफत सला तेरी, नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया, वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब, क्या नाहीं घर तेरा सच्चा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जैना भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसया, जैन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटो, जिस दिया एह वड़ियाइया, कहे नानक सुनो संतो हो, शब्द थरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो, वाजे पंशव तित कर सुपागे, कर सुपागे शब्द वाजे, कला जित कर तारिया पंच दो तुद वस कीते, काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको, से नाम हर के लागे कह नानक तैं सुखोआ, तित कर अन्न हद वाजे।
आनंद सुनो बड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल बसुरे दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी संत साजन पये सरसे, पूरे गुरते जानी सुनते पुनी कहते भवित, सतगुर रहा भरे हुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनाहद तुरे सुनते पुनी कहते पवित, सतगुर रहा पर भुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनाहद तुरे मुंदावणी महला पंजवा। थाल विच तेन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबसे आधारो, जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो, एह वस्त तजी नहीं जाई नित नित रख और तारो, तम संसार चरण लग तरिये सब नानक ब्रह्म पसारो। स्लो महला पंजवा, तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई, तरस पाया मेहरा मत होई, सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले तां जीवा, तन मन थीवे हरे आ तरस पाया बेहरा मत होई, सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले तां जीवां।

0: गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड संग। तुम मात पिता हम

सब सुखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो जो प्रभु को मिलबो चुहै राज करेगा खालसा खुआर हो सम लेंगे।

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ
0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ

गुरु प्यारे सत संगी जनों, सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी का लाहा प्राप्त किया है। लड़ीवार गुरु इतिहासिक विचार धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी दे पावन इतिहास नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है, मन बिरतियां नूं एकाग्र करदे होए निमाणे जे हो के समर्थ सतगुरु जी दे पावन चरणां च जुड़न दा यतन करिए। सभना दियां हाजरियां गुरु पातशाह जी दे पावन चरणां विच लग जाण। आप जी रोजाना इस अस्थान तो श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ दे राही कवि संतोख सिंह जी दे द्वारा भाई राम कोयर जी वल्लों सुनाया गया इतिहास लड़ीवार आप जी सरवण करते आ रहे हो। दशमेश पिता शाही शहनशाह बादशाह दरवेश धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का पावन इतिहास भाई राम कोयर जी सिख संगतां नूं सरवण करवा रहे हैं। स्रोते जन सुरत ला के भाई साहब जी पासों इतिहास सुनते हैं और भाई राम कोयर जी का अपना भी जीवन कमाई वाला है। मन और तन करके गुरु महाराज जी नूं समर्पित ने और धन बाबा बुढ़ा साहब जी की अंश वंश विचों हन। जिथे इतिहास स्रोते सुन रहे ने उथे आपां भी ये इतिहास इस अस्थान ते बैठ करके जां मीडिया दे राहीं दूर दराडे बैठ के इतिहास सरवण कर रहे हैं। जदों कहलूरी राजा राजा भीम चंद ने राजियां दे नाल रल के दिल्ली सरकारे दरबारे मदद मंगण वास्ते अपना एक वजीर भेजिया भी जाओ, जाके उन्होंने आखो कि साड़ी मदद करो, सानू सेना दियो, असी आनंदपुर साहब ते चढ़ाई करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नू आनंदपुर साहब तो बाहर करना चाहते हैं। तो जदों ये दिल्ली पहुँचिया पता लगा भी इत्थे तां रिश्वत देनी पएगी, तां इन्होंने साड़ी पुकार करनी है। एक गल ध्यान च रखियो, जिहड़ा काम रिश्वत दे के हुंदा है वह काम कदे भी सही नहीं हुंदा। गलत काम करवाउण वास्ते ही रिश्वत दित्ती जांदी है, सही वास्ते लोड़ नहीं। इहदा मतलब ये गलत ने बाई धार दे राजे जिन्हां नूं पता है, जिहड़े चाहुंदे ने ईरखा करदे आ गुरु महाराज जी दे नाल, गुरु साहिब जी दे खालसा जो महाराज ने पंथ खालसा साजिया, दिनों दिन चढ़दी कला जिहड़ी है वह इन्हां कोलों बर्दाश्त नहीं हो पा रही। जान बुझ के हालांकि गुरु साहब ने कोई इन्हों का माड़ा ना किया ना सोचिया, पर ईरखा दे वस हो के जान बुझ के गुरु महाराज के नाल झगड़ा करना चाहते ने। एक लख दी रकम जो इतिहास विच आप जी ने सुनिया सी रजतपन, एक लख चांदी दे सिक्के दिल्ली भेजे, उत्थों दे सूबेदार ने फिर दो कहिंदे कहाउंदे योधे जिहड़े ने उह भेजे ने दीना बेग और पेंडे खां, दस हज़ार

0: और भाई उदय सिंह जी इत आदक जिहड़े बहादुर योधे हन
1: रण भूम आए वाओ सिंह पीर
0: ए फिर इस रण दे मैदान दे विच जिथे ए रण होना है युद्ध होना है कहिंदे इत्थे जिथे झड़प होई है ए फिर अपने घोड़े तुड़ा के इस पासे

वृंदन श्री हरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आय जस डठ सब दुख जाय तेग बहादुर सुमरै करनो निदावे ताए सब थाई होए सहाय दसवा पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसवा पातशाह दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दे पाठ विदार दा ध्यान करके बोलो जी पंजां प्यारियां चौहान साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड

रात्रि वेले दीवान सजाए गए सजे हुए दीवान अंदर गुरु इतिहासिक लड़ीवार कथा विचार शब्द कीर्तन से पौड़ियां आनंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करने अपनी अंग दर ते समूह साध संगत दे हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल पेटा वांदर प्रवान करनी यात्रा वस

दुहरंग अज्ञा पई अकाल की सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी मानियो जो प्रभु को मिल बोच है। राज करेगा खालसा खुआर हुए सा मिलेंगे, खुआर हुए सा मिलेंगे। बोले सो निहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

ਸਤਨਾਮ।

सतगुरु हो दयालो तन श्रद्धा पूरी है।

सतगुरु हो दया ता हर वंग हो मानिए सो कोटल गुरु से

ਸਤਨਾਮ ਰਤਾਰ ਸਤ ਸੰਗ ਰਹਿ ਸਦ ਸਚ ਰਹਿ।

ਸਤਨਾਮ ਉਤਾਰ ਸਚ ਸੰਗ ਰਹੇ ਸਦ ਸਚ ਰਹੇ ਸਚ ਨਾਮ

तान किया संग जी जाना भगवतड़ा।

जित सुहिले सदा सुख हो रहाओ। नित नित जीवड़ संभालियन देखेगा, देवन हार तेरे दान कीमत न पवै, तिस दाते कवन सुमार। संबत साह लिखिया मिल कर पावो, तेल दे हो सजन।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी।

ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।

प्रताप सदा गुर का कट कट परगास पया जस जन कै इक पढ़ै सुनै गावै पर बातै करै इशनान इशनान करै पर बात सुध मन गुर पूजा बिद सहत करं कंचन तन होए परस परस को ज्योत स्वरूपी ध्यान तरंग जग जी

है निस्वासुर होए कल्याण लहे परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन स्यो छाड़ तो होमे का फंद काट साध संग रत जियो देहे गेह त्रै सुने चित विलास जगत

गुर गुरु जप सत कर अगम गुण जान निदान हर मन धरो ध्यान।

संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निरभौ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुग्ध मन भ्रम तजो नाम गुर मुख पजो गुरु गुर गुरु गुर गुरु।

सजन सचा पात साहो से साहो जिस पास बैठिया सोइए सपना दिसाहो सतना श्री वाहे गुरु साहेब जी जयत।

कृष्ण मोहन लाल प्यारे हम फिर खुजंतिया।

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राजान राज पनाहन पान, देवान देव उपमा महान, सर्व सांझी बालता दे रहबर, बेअंत भगतां दी टेक, दसां पातशाहियां दी जागदी जोत, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जीआं दे पावन और पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जीआं दे अमृत वेले दे दर्शन कर रहे हाँ, अमृत वेले दी हाजरियां लगवा रहे हाँ। जो सतगुरां ने त्रुट के प्रसन्न हो करके मेहरबान हो के साडे सभना दी झोली दे अंदर पावन हुक्म दी दात पाई है, सो पावन हुक्म जैत श्री राग दे अंदर शहीदां दे सरताज, शांति दे पुंज, प्रेम दी मूरत, पंजवें पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जीआं दा शब्द है, जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर 703 अते 704 अंग दे उपर सवाईमान है। सो पातशाह जी पावन हुक्म दे राही किहड़ियां बेशकीमती दातां दे नाल निवाजना कर रहे ने, आहो प्यार सतकार वैराग दे विच भेजी के सरवण करना करिए जी। जैत श्री महला पंजवा, संत घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्लोक दर्शन प्यासी दिन सरात,

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ।